जीव जंत उस पानी अंदर रहण वाले हन, फिर तेन उन्हों का पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं, कितना पानी ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं।

गुरु नानक आख्या गुरु नानक प्रगटिया राय पोएं दी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में परवरे राय पोए दी तलवंडी विच निरंकार ने मैता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है वो सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिमें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हत्थां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई सत सिगत बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तोड़े कर ता कोई अनोखा ही बालक।

कालू कहन लगा ए ता है ही निखटू कोई कम कार नहीं करदा वेले बैठा रहंदा है एक काम इस नु करन वास्ते भेजिया सी ओ भी उजाड़ के आ गया क्यों नानक इवें क्यों कीता मैं ता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे पिता जी इदे खेत नु ता कुछ होया ही नहीं ए इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया है इदी खेती नु कुछ नहीं होया इदी खेती ता उसे तरह लहलला रही है सत सगत बोलो श्री हरी भरी है ओ कहिंदे नहीं मैं अपनी अखां नाल वेख के आया चलो मेरे नाल ते सारे जदों इकट्ठे होके उत्थे पहुंचे प्यारी सतसंग जी गुरु नानक दी ऐसी करनी ऐसी वडियाई वरती ओ जेड़ी खेती सारी उजड़ गई सी ओ खेती सारी दोबारा लै लहा रही है कोई कहिंदा नहीं के इत्थे गाइयां मजियां आईयां भी कोई नहीं उन्हें

बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी किवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डुब गया लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है वो कदे डुब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया आवाज आई बेबे करतार चित आवे उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया।

तारदे हुए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदो पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उथे दे लोग कर्म कांडा विच पए हुए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊंदा। ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पोगे तां इन्हां कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ये सारियां सिफरां हन, सिफरां ये सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन जप तप हन बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणा। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्हें सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना, याद रख ओ करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाघा।

दातेन सला, जिन्हें सारा संसार बनाया ये वस्तुआं बनाई तेरे भोगण वास्ते, इतना कुछ परमात्मा ने तेनू दिता ते तू दी सलागा नहीं कर, तू ओदी उस्तत नहीं करदा। क्यों नहीं करदा भाई? ओदी उस्तत विच जुड़ जा। इसा पदार्थ तन दौलत उस परमात्मा दे ते बख्शे ने, ये ठीक है तू मेहनत कीती, पर जे परमात्मा शरीर ही ना देंदा इंसान तो की करन जोगा सी? जो कुछ भी कीता है परमात्मा ने कीता है, परमात्मा ने तेनू बनाया ओदे हुक्म अनुसार तू ओदा हुक्म जा रहे। साहिब जी फरमान करदे ने, मन मेरे करते नू सहलाए नानक आप सदीव है।

सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ऐ चीज बड़ी खूबसूरत, ऐ चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ऐ वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तां कर दे, बड़ा कुछ आखद, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखद साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलान, ते साहिब आख लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत कर, यह उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, यह सच्ची उस्तत थी, ए उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा, यह गुरु नानक का वर होए मरदानी नू। साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन, चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते काल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुवास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की।

0: पार ब्रह्म।
1: जदों पार ब्रह्म ने हिरदे अंदर निवास कर लिया, भगतां में गणे ते भगतां दे विच ना आ गए। हिरदे विच पार ब्रह्म ने निवास कदों कीता?

अकाल पुरख से ये अरदास कर रहे मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी दोस्त आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर ये दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते ये महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म तो फल भी दर्शन चाहिए असं कलयुग जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं देह शिवावर मोहे के है ते ये भी कहते हैं कि कलयुग दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव है सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत न भेद महादेव नु लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहें भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव नूं शिव जी कहा जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख है उस अकाल पुरख दे के कलगीधर दशमेश पिता जी ने ये अरदास की थी ते ए वर मंगे दे शिवा वर मुरे के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े वास्ते जिन्हों ने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्रीवान धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां कर फतेह प्राप्त नासवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया
ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸੀ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ। ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ। ਆਓ ਜੋ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ।

hasta tu vida. एक दिन आपने अपनी प्रशादा तैयार की, मन प्यार से सता रहा है, आप रसोई च बह के गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भोजन तैयार किया, एक ख्याल कलगी का किसी पातशाह जी ने अज अपने अपनी प्रशाद किया। माता जी श्री जी जिसे कलगी दत्त के पातशाह जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं, उसे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी करते हैं। सिख ने बुलाया जा सिखा, कवि जी ने बुला के लिया, सिख आए हाथ जोड़ के अरदास की थी, बहुत लोग की नाथ सदगुरु माता जी याद करते श्री दशमेश पिता जी थे आए, नमस्कार की थी माता ने, सोना आसन बिछाया हुआ बैठ प्रसादे का थाल परोसिया हजूर दे के रखे। कवि जी साहबजादे भी आ जाने से चंगा, माता गुजरी जी दसवें पातशाह जी ने कवि जी करके बुलाने नाम नहीं सी लेंदे, क्योंकि छेवें पातशाह जी का नाम सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब, दसवें पातशाह का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, अदब करते सन नाम नहीं सी लेंदे, कवि जी करके मेरे हजूर ने जो कुछ माता ने वचन किया उन्हों सफल करते हैं, जितनी बाणी उचारी है उपर लिखे कवियो बात आखो श्री है कवियो बात। साहबजादे भी आ जाते इशारा किया, सिख भजा गया साहबजादे भी आ चार आसन होर साहबजादे बैठ चार थाल होर परोसे इन्हों के अगे भी रखे। साहबजादे मेरे कलगी दस्ते पातशाह जी भोजन छक रहे ते माता गुजरी जी वेख वेख के पिछर दी, कोई मन ख्याल आ गया कवि जी हुण साहबजादे जवान हो गए ना कुछ रिवाज देखो ना कितने सुंदर मुख है, चौड़ियां छाती कितने सुंदर शरीर, मेरा चित कर रहा है इन्हों दी हुण शादियां कर दे, शरीर का कोई पता नहीं, मन के अंदर यह ख्याल आया अपने हथी देखा इन्हों घोड़िया तो चले हजूर मुस्कुरा है सतगुरु सचे पातशाह मुस्कुराए, मां जी साहबजादियों दादियां हां मेरी इच्छा है मेरे दिल की यह तमन्ना है। हजूर कहने लगे मां जी फिर फिक्र न करो, मंगनियां तो इन्हों हो चुकी हैं, शादियां दी तारीखां भी नेड़े ही हैं। हैरान हो गई मां जी माता गुजरी जी, कवि जी मंगनियां कर दी मैनू दसिया ही नहीं, तुसी अपने आप ही मंगनियां की, फिर ख्याल रखे जे विवाह वेले शादियां वेले आनंद कारज वेले मैनू जरूर याद कर। हजूर कहने लगे मां जी जिस दिन साहबजादियों का जन्म होया मंगनिया उस वेले हो गई, हम तो विह दिया तरीखा भी नेड़े हैं। अच्छा फिर मैनू हजूर कहने लगे फिक्र ना करो समा आएगा, दो दी जंज असी चम

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे

इयों ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़ग